0: रेडियो आदिपुरा 105.4
1: सुनिस न अहिले हाम्रो गर्नेमा
2: ए समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
3: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर को पांच घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
2: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: समी चो 14 के में बोदे लोटी पर्दीरो बैंगे ने विवरण पी भिया मई खातरी खई हमरो
2: खई खई बहु कोई लोटी बर्दिलवा
3: आंगे समी जो लोटी पर्दी हूं छापताई गुदी
2: बर्दी आ बर्दी बा लोटी खले पर्दिम बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खने बनी खई बिसा खई मई विश्वास आनन होने खले पनी आफै विवरण खई मई आपिन खबै बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खई मई आरी सुमी बैंक आफै बनी आरी
4: सतर्क तन ठगिस क्या बसेना
5: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
6: यमहा बेस्ट एक्सचेंज अझै ज्यादा अझै धेरै यही असार 7 गते देखि 12 गते सम्म स्थान वालिङ 8 मुक्तिनाथ विकास बैंक अगाडी यमहा लैजाउ घरमा नागरिकताकै भरमा 2 वर्ष ट्याक्स फ्री राइड फ्री अट्र्याक्टिभ क्याश डिस्काउन्ट हाई भ्यालु एडिसन फ्री हेलमेट स्पट एक्सचेंज इजी फाइनान्स थप जानकारीको लागि सुलोसन अटो सेल्स वालिङ 10 भकुन्डे सम्पर्क मोबाइल 98560 86 143
0: रेडियो आदि खुला 105.4

एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंजा।

0: दस बजे
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: ना अहिले हाम्रो गर्नेमा
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: रेडियो यूनिवर्सिटी से एक से पांच दशमलव चार मेगा हर्ट्ज को रेडियो आदि खोले रखें क्या?
1: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानी को भोग लायो। तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4।

एसएस आदि फ्लाग खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सैंजा